0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की।
3: हुँ?
2: आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेल कूद,

0: प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
1: जी
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गाँव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ఇంతవరకు మీరు ఎన్సీఈఆర్టీ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री

0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోల సమయం 12 గంటలు దాటి 5 నిమిషాలు. ఈరోజు కవి రచయిత డాక్టర్ సీరాం నారాయణ రెడ్డి గారి వర్ధంతి. ఈ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని వారిని మనం గుర్తు చేసుకుందాం. వారు రాసిన పాటలు వింటూ చైతన్య స్ఫూర్తిలో. మరి చైతన్య స్ఫూర్తిలో మనం ఈరోజు ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాము? కేదార్నాథ్ పరమ పవిత్రధామం. ఎన్నో కష్టాలు కోర్చి దర్శనానికి వెళ్తాం, తిరిగి వస్తాం పుణ్యంతో. వచ్చేటప్పుడు పుణ్యంతో పాటు ఒక చిరు బాధ్యతను కూడా నెరవేరుస్తేనో? అర్థం కావట్లేదా? ముందైతే పాట వినేద్దాం.

दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां

0: जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी दी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी, मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी,
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात
1: जी।
0: है चांदनी जी, क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी, क्या बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: जी, मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी चवर कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चवर आते थे ना पहले,
0: जी,
1: खाकी
0: कवर जी,
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए। वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्चे अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा,
0: मैं ना भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
0: हम धन्नोजय सवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
1: झांसी से धन्नोजय सवाल। धन्नोजय, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
0: हमारे 3 बच्चे हैं
1: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
0: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
1: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
0: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
1: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
0: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
1: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
0: आप ही बिन
1: जी, तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी,

0: जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ,
0: जी
1: बताइए
0: जी। हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, तूफान में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी,
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटी चौक में
0: जी।
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल। तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है, मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत बहुत बहुत हाँ।
0: जी तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ
0: जी,
1: पे।
0: जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल, वो छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई में ही ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे?
1: हाँ, ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
1: बहुत बहुत मैम
0: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में

0: इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया, या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता, या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी, मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी, ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत, उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर, बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकू दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में,
0: जी
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, रहनी हूँ घर के।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं?
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते।
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के, जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं, तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला, और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने। हाँ
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल
1: अग्निपथ का।
0: आप ही की पसंद का, सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे
1: तो
0: वाह।
1: इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर वो बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो वो जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है। अच्छा। और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है,
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी। हाँ जी जी जी
0: जी तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: देवर के, एक है, एक मेरा है। हाँ।
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके अब?
1: नहीं नहीं छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी। हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी।
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ।
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते
0: मैम। नमस्ते,
1: मैं अमीना मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनना था तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताज़ा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240004000।

0: 02462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नज़र 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफ़ेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नज़र आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नज़र उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नज़र दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नज़र उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफ़ेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नज़र रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नज़र उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नज़र पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नज़र दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नज़र से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थीं। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नज़र का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफ़ेद कवर की डायरी में पेन नज़र आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फ़ोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फ़ोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाज़ा आवाज़ के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएँ हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज़ की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहां रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
1: नहीं।
0: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज़ सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नज़र हटाकर मेज पर सजी महिला की फ़ोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छन कर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से ज़रा सा हटकर छाँव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
1: क्या बताऊं?
0: यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
1: पर बताना तो पड़ेगा ना।
0: पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम।
0: ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नज़र पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फ़ोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्ज़ी और रोटी ले आऊँगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू, प्रेम से कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फ़ोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज़ की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाज़ा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती हैं, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उस

कि माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते? तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूँगी। अच्छा, बुआ ने ज़्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुँह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही

कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी, तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान

से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, इतनी तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्माकर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है, फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा, मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे, लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उस

ने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल किनिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद के जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने

लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ, मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज़ तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना। पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो इंतज़ार बहुत साल पहले ख़त्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फ़ोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतज़ार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज़ हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके

0: भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है, तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में, उस समय में उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने

का विषय हो। जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपये का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है,
ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी।

0: तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन

0: उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दम्भ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्यशास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में

0: अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियाँ आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए हैं। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुँचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया,

0: भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जा कर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा जी, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो

0: सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: ఆకాశవాణి వరంగల్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 11:45. ఇక ఇంతటితో ఈనాటి మా ఈ ప్రసారం సమాప్తం. తిరిగి రేపు ఉదయం ఎఫ్ఎం బ్యాండ్ 103.5 MHz మా ప్రభాత ప్రసారంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు మరి, నమస్కారం, జై హింద్.